0: Sop Swagger Health Centers de BP laga free checkup, treatment aro kau phal thakibo laga modop di ase. BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-1166-66 te call koribi. BP haribo desh jitibo. Kitu jankari NTEP bar di ase.
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से

0: स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो

0: से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के

वेल माइ डियर फ्रेन्डस पहला गीत शुनिकेन आपनि सबि दाजा दाजा मेमरीज कान याद करि किना शुनि थाकिब बिले मोर पूरा आशा आछे। मुविंग अन टू द नेक्स्ट ट्रेक आमि खानि एकटा एवरग्रीन।

0: Hello,
1: kun koi ase?
0: Hello, namaskar.
1: Namaskar, who is calling?
0: Namaskar, Premojit Chakravarti koi ase.
1: Bimojit?
0: Premojit Chakravarti koi ase, Ohom Bagdya Shibuni Jalar Pura.
1: Okay, Premojit, Prakandit.
0: Yod Gaal Lagise, Yod Gaal Lagise, Apunne Rishik Kuri Sho, Yod Gaal Lagise Maas.
1: Oh, Prakandit Swagat Kuri Ase, Aro Kupo?
0: Atakani Kuri War, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगे
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छा कार्यक्रम है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपका जो प्रेजेंटेशन है ना
1: जी
0: प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है मेरा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है
1: थैंक यू सो मच
0: और आकाशन आज ही नई गीत हुई जो मूवी के नाम तो आसे
1: मूवी लगा नाम
0: याराना आसे
1: मूवी लगा नाम याराना
0: याराना
1: ओके
0: और से जो कॉल मेरे मन को क्या तुमने किया इशारा
1: अच्छा
0: किशोर कुमार जी
1: अच्छा
0: से
1: अच्छा
0: और मैं दो चार मित्र नाम लेना चाहता हूँ
1: लोगो मोना से
0: प्रथम तो हूँ वो अमित कुमार भट्टाचार्य डांगरिया और बाइकन मुंडा हूँ वो बहुत अच्छा सिखाई बच्चन मुंडा जी बाइकन मुंडा जी को साथ मेरा बात हुआ बहुत अच्छा लगा उनको धन्यवाद करके
1: अच्छा अच्छा
0: और उन्हीं वो अभी लश्करी डांगरिया उन्हीं को मिथुन चक्रवर्ती और कमल बसमता भी हूँ वो आशीष जगन्नाथ डांगरिया हूँ वो और संगीता जगन्नाथ हूँ वो और एक उनको तो जगह को लुटागंज आकाशवाणी कुभी मा कार्यक्रम हूँ से सकल नहीं हूँ वो
1: ठीक है
0: तार आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कॉल कर रहा हूँ अभी आप अच्छा रहे आपको नमस्कार
1: ओके नमस्कार थैंक यू
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है नमस्कार थैंक यू सो मच बाय बाय ओके
1: वेलकम बाय তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি খান লাগা রেগুলার লিসনার থাকি আছে প্রেমজিৎ চক্রবর্তী আর তাই রিকুয়েস্ট করলা গীত আমি খান শুনি হব ইয়ারানা ফিল্মরা কিশোর কুমার লাগা বাস্তে মিউজিক দিছে রাজেশ আর রোশন লিরিক্স আঞ্জান আর তাই মান সুন্দরবা নাগামিজ খুঁতা কবলে ইমান ট্রাই করে আছে হলিবি তাই নাগামিজ বেঙ্গলি হিন্দি আসামিজ সব মিক্স করে না কই আছে রাইট এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রেমজিৎ চক্রবর্তী ফর ইয়র এফর্ট আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কলিং ওয়ান্স এগেন আর শুনি কিনা এনজয় করবো আপনি রিকুয়েস্ট করে গীত

0: Well, my dear friends, I'm Michal Abadan, next caller, Takese. Hello.
1: Namaskar, sir.
0: Namaskar, kum bol raha hai?
1: Main Tripura se Ashutosh bol raha hu.
0: Okay, Ashutosh, program mein swagat hai. Aur bataiye, aaj ka mausam kaisa raha?
1: Mausam, sir ji, acha nahi hai.
0: Acha?
1: Mausam bahut kharab mausam hai. Lagatar barish chal raha hai, 2-3 din se ghar se nikal nahi pa raha hu, sir ji.
0: Ji. Pura notice ka, matlab, halat aisa hi hai aaj kal, matlab, for the next few days, aise hai, protection raha hai. तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है हम लोग
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: या और मतलब ऐसे फ्लड्स या लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं होता है ना
1: होता है सर जी ज्यादा बारिश होने से फ्लड हो जाता है
0: जी
1: पूरा जो हमारा आने जाने का जो रोड होता है रोड का ऊपर पूरा पानी और पानी रहता है
0: जी आप त्रिपुरा कौन सा वाला
1: नहीं अभी ऐसा स्थिति अभी नहीं हुआ है
0: जी
1: तो ये स्थिति और कुछ दिन चलेगा तो हो सकता है
0: जी जी वो सही है तो बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
1: तो सर जी आज मुझे सुना दीजिए फिल्म का नाम है साथी
0: साथी
1: जी
0: ओके और कौन सा वाला गीत
1: गाने का बोल है दौलत का दुनिया सलाम करते हैं ऐसा गाना है
0: दौलत का दुनिया सलाम करते हैं मैं देखता हूँ
1: देखिए सर जी
0: मेरा बस साथी एक है मुकेश लता मंगेशकर योगदा
1: ये 1991 का फिल्म है
0: अच्छा और 1991 का फिल्म साथी से एक मतलब अनुत बुरबल कुमार सानुगा ये है हुई आंख नाम जिंदगी के तलाश में और आज हम तुम और सनम सिर्फ तीन थो सॉन्ग
1: तो सर जी सुना दीजिए आपने जो गाना बोला शानु जी की आवाजों में
0: कुमार सानू जी का आवाज में ये जिंदगी के तलाश में
1: जी जो इस गाने को लिखा है समीर जी ने और नदीम सावन जी ने सुर से साजा इस गाने
0: राइट राइट आपको एकदम पक्का मतलब पता है कि कौन गीत लिखा है कौन कैसा है राइट
1: थोड़ा थोड़ा रखता हूँ सर जी क्योंकि देखिए सर जी गाना बनने के पीछे इम्पोर्टेंट तीन रोल होता है
0: right.
1: सिंगर का रोल
0: जी
1: म्यूजिक डायरेक्टर का रोल
0: जी
1: और लिरिक्स का रोल
0: क्या बात है
1: यहाँ एक एब्सेंट होगा तो गाना कभी बनेगा नहीं
0: वो सही है एकदम पक्का मतलब आप इतना जानकारी है कि गाना का परि में बहुत बहुत खुशी है इसका परि में जान के
1: और सर जी लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर को हम लोग बिल्कुल याद नहीं करता उन लोगों को याद करना चाहिए और म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स हम लोग का जैसा साधारण इंसान नहीं है वो बहुत बड़ा लीजेंड है
0: राइट वो मतलब लाइमलाइट में नहीं आता है लेकिन उसका पीछे में पर्दे के पीछे में रहता है
1: पर्दे के पीछे में
0: जी
1: बिल्कुल सर
0: तो थैंक यू सो मच आप ये पूरा म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स को याद करने के लिए याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच

0: इजाजत हो तो दो चार दोस्तों को याद करता।
1: हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल।
0: पहले सर आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: थैंक यू।
0: और असम से प्रेमजीत चक्रवर्ती जी।
1: ओके।
0: और प्रेम सिंह भैया और भगवान सिंह पारमार और रमेश प्रजापति मध्य प्रदेश से।
1: ओके।
0: और राकेश जी और पूरन वर्मा जी और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लगे सुनना
1: है। क्या बात है। और आशुतोष से पता ही है, ये पहले पर आपसे बात हो रहा है ना? मैं
0: पहली बार आपसे बात हो रहा है सर।
1: हाँ।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, आपसे बात हुआ, बहुत अच्छा लगा आशुतोष जी, और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: जी जी।
1: ओके बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिखलना का रेगुलर लिसनर ठाके से आशुतोष फ्रॉम त्रिपुरा, और तई रिक्वेस्ट को लगा गीत मिखन हुनिया बहुत साथी फिल्म र कुमार सानू लगा आवाज थे। म्यूजिक दिसे नदीम और श्रवण जेरिक संतोष आनंद और क्वानिशना अमिखन खाली काना गुड़िया मानु ही नोगेना म्यूजिक बनाई दिया और लिरिसिस माने कुनरा इटू म्यूजिक लगा लिखी दिए से तखन बेसि डाउन रोल प्ले कर अमिखन सब भी होता है कितिया म्यूजिक शुनब तमिखने इटूखन लगा रोल कभी याद करना शुनब। थैंक यू सो माच फॉर रिमाइंडिंग अबाउट दैट आशुतोष।

0: FM 103 megahertz.
1: Welcome back, my dear friends, and we have the next caller with us. Hello.
2: Namaskar, Radhe Radhe sir.
1: Hello, namaskar. Who is on the line? Who is calling?
2: मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ सर.
1: संगीता देवनाथ.
2: संगीता.
1: From?
2: पहला कलर मेरा हस्बैंड था आशुतोष देवनाथ
1: त्रिपुरा. अच्छा, त्रिपुरा से आशुतोष. ओके, तो दोनों का एकदम लगातार फोन लाइन लगता है आज.
2: जी, किस्मत अच्छा है सर, और आपसे बात करने का मौका भी मिल गया आज पहली बार मुझे.
1: जी जी जी, बहुत अच्छा किस्मत है दोनों का. आज क्या क्या किया था ये किस्मत बनी के लिए?
2: भगवान जाने.
1: भगवान जाने. ठीक है, और बताइए संगीता जी, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
2: जी सर, मुझे आशिकी मूवी का गाना सुना दीजिए.
1: ओके, और किसी का नाम लेना चाहूंगा?
2: जी पहले आपको सुनाना चाहती हूँ.
1: ओके,
2: और आसाम से तेमुजी चक्रवर्ती.
1: ओके,
2: और त्रिपुरा से अविनाश भैया, मेरे हस्बैंड आशुतोष देवनाथ.
1: ओके,
2: और मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार.
1: जी,
2: और रमेश भैया, तेमुजी प्रेम सिंह सिसोदिया, सबको लेकर सुनाए सर.
1: वाओ वाओ. अच्छा संगीता जी, बताइए आप, मतलब आशुतोष, आप दोनों मिलकर एक दिन में कितना बार ये आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रकबन सुनता है?
2: सुनता हूँ सर.
1: अच्छा, सिर्फ फोन इन प्रोग्राम सुनता है या अलग प्रोग्राम भी सुनता है?
2: नहीं सर, सच बात बताओ कि हम लोग फोन इन प्रोग्राम में ज्यादा सुनती हूँ.
1: हाँ, वो वहां में आपका भी शामिल होता है ना, इसलिए वो सही है. वो सही है. थैंक यू सो मच. और आप कौन सा वाला मीडियम से सुन रहा है ये न्यूज ऑन एयर ऐप का?
2: न्यूज ऑन एयर में सुनना सुनती हूँ सर.
1: क्या बात है. और कहाँ से ये वाला पता मिला, मतलब के ये ऐसे आकर्षण
2: कोई मिला? मेरा एक भैया है भगवान सिंह फार्मा, उसने बताया मुझे.
1: अच्छा,
2: तो नंबर दिया.
1: अच्छा,
2: हमेशा बातचीत भी होती है सर.
1: क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर कॉलिंग. और आप सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग. ओके
2: ओके सर.
1: ओके, यू आर वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, संगीता देवनाथ आशुतोष লাগা মাইকি থাকি আছে, আৰু তাই ৰিকুৱেষ্ট হোৱা লগা গীত আমি খান শুনি হ'ব আশিকী ফিল্মৰা অনুৰাধ বৰুৱাল আৰু কুমাৰ চানু আৱাজতে. মিউজিক দিছে নাতি মাৰু শ্ৰাৱণ, লিৰিক্স সমীৰ, আৰু তাইৰ নাম লোৱা চবকে দুকীৰ্তি টিকেট কৰি দি আছে. শুনি কেনে এনজয় কৰিবি মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ.

0: Well, my dear friends, I'm coming with a next caller. Thank you, sir. Hello.
1: जी नमस्ते.
0: जी नमस्ते. कौन बोल रहा है?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से.
0: ओके प्रेम सिंह जी, प्रोग्राम में स्वागत है. और बताइए, आज का मौसम कैसा है उधर?
1: जी मैं अभी फिलहाल तो झालावाड़ में हूँ. यहाँ का मौसम अच्छा है, बादल छाए हुए हैं.
0: ओके.
1: और ठंडी हवाएं भी चल रही है. अभी मैं मध्य प्रदेश से थोड़ा राजस्थान में हूँ.
0: क्या बात है. और बताइए, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: माँ तुझे सलाम फिल्म का नाम है. Okay. और गाने के बोले छोड़ के न जा पिया, तुझको मैंने दिल दे दिया.
0: फिल्म का नाम माँ तुझे सलाम.
1: जी
0: अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ. या मेरा म्यूजिक बैंक में ये वाला फिल्म नहीं है. आई एम वेरी सॉरी.
1: फिर राम तेरी गंगा मेली.
0: राम तेरी गंगा
1: पहाड़ों का.
0: हाँ,
1: उसका हुस्न पहाड़ों का.
0: कोई हुस्न पहाड़ों का.
1: पहाड़ों का. जी जी
0: जी जी. ओके, लता मंगेशकर, राइट? अच्छा, नाम से पता चलता है या मेरा आवाज से पता चलता है?
1: आवाज से पता चल जाता है. और एक बात बताऊं सर आपको.
0: हाँ.
1: जैसे कि जितने मध्य प्रदेश के कॉल आते हैं ना
0: जी,
1: सब हिंदी में बात करते हैं और आप भी हिंदी में बात करते हैं, तो हम लोगों ने आपकी हिंदी भी थोड़ी ठीक कर दी है.
0: जी जी.
1: हमारे साथ साथ में आप भी हिंदी बोलने लगे हो.
0: हाँ, मेरा जो हिंदी है बहुत कमती, मतलब बहुत कम बोल सकता है. लेकिन अभी आप लोग का मेहरबानी से, आप लोग का साथ बात करके थोड़ा थोड़ा मतलब इम्प्रूव हो रहा है. थैंक यू सो मच.
1: मैडम जी भी आते हैं ना कार्यक्रम देने के लिए.
0: जी
1: वो भी काफी मतलब अच्छे हिंदी तो बोलने लगे हमारे साथ साथ में.
0: ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच
1: जी.
0: तो किसी का नाम लेना चाहूंगा? किसी को
1: जी सर, मैं आपको आपके साथ में सुनना चाहूंगा. और जितने भी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं ना,
0: ओके,
1: आशुतोष अविनाश, संगीता जी, भगवान सिंह परमार, इन सभी लोगों को सुनाना चाहूंगा.
0: अच्छा.
1: और अभी जैसे आपको बताऊं, झालावाड़ में भी नहीं गया था. यहाँ का मौसम काफी अच्छा है अभी.
0: क्या बात है. तो एंजॉय कीजिए और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: जी थैंक यू सो मच.
0: यू आर वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम सिंह सिसोदिया उज्जैन लगा था कि ऐसे तह रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमी खान खुनी अब राम तेरे गंगा माइली फिल्म रा लता मंगेशकर वस्ते म्यूजिक दिसे रविंद्र जैन म्यूजिक और लिरिक्स दिसे रविंद्र जैन और तह नाम लॉस ऑफ के टिकट को दिए से होने के ना एंजॉय कर भी माय डियर फ्रेंड्स.

0: Well, my dear friends, Amini Khan, Lata Mangeshkar aru Suresh Warkar laga awaz te Ram Tere Ganga Maili film bra apni khan geet huni thakise aru etu geet Prem Singh Sesudia Ujjain bar request ko laga geet thakise Amir Khan logote next caller thaki ase. Hello.
1: Jai Mata Di. Mera naam hai Puran Verma, Karnat District, Jaipur, Rajasthan, gaon ka naam Anshuman Bugulat baat kar raha hai sir.
0: पुराण वर्मा जी प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कैसा रहा दिन?
1: बस सर बढ़िया है, यहाँ बादल छा रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मौसम बढ़िया हो रहा है सर।
0: ओके,
1: आप तो उधर?
0: इधर बहुत बारिश हो रहा है कल से और यहाँ में मतलब फॉर द नेक्स्ट अबाउट फ्यू डेज और भी बारिश होने का प्रिडिक्शन रहा है, तो थोड़ा बहुत डेंजर्स। हाँ ठीक है, बताइए मूवी का नाम।
1: जी सर, मूवी का नाम रहेगा मेरे जीवन साथी।
0: ओके,
1: देख लो मूवी है क्या?
0: हाँ मूवी है। कौन सा?
1: इसमें गाने के बोले देखिए इस तरह आपकी तस्वीर, ऐसा कुछ गाना है, अलका याग्निक की आवाज है। हर तरफ आपकी तस्वीर है।
0: नहीं नहीं नहीं, मेरा इसमें अलका याग्निक का, अलका याग्निक का नहीं है इधर, मतलब मेरा जीवन साथी ये वाला है 1990 का।
1: किसकी आवाज है?
0: हाँ इसमें मैं आपको सुनाई देता हूँ ये टाइटल ऑफ द सॉन्ग। आओ कन्हाई मेरे तम।

0: मूवी का नाम रहेगा जो सनम दे देता।
1: सनम,
0: दे देता।
1: ओके, सनम बेवफा हो सकता है। सनम हर जाए है, सनम रे है, सनम बेवफा भी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी प्रेम सिंह।
0: नो, फिल्म का नाम करण अर्जुन।
1: फिल्म का नाम
0: करण अर्जुन।
1: करण अर्जुन, हाँ फिल्म का नाम करण अर्जुन है। और कौन सा वाला गीत?
0: इसमें गाने को बोला है
1: जी,
0: राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे सो, ये गाना है।
1: मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। बंगारा बाले आजा आजा एक है, एक मुंडा मेरी उम्र था एक है, गुपचुप है। अच्छा, गुपचुप। ओके, और बताइए।
0: बढ़िया है, और सबसे पहले आप सुनोगे इस गाने को।
1: थैंक यू।
0: और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, शिवा लोहार है, और विमल है, अमल है, और अंजलि है, और जितने भी कॉलर जिसका भी नाम छूट गया उन श्रोताओं तक लाइव जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, न्यूज AIRF DTS के श्रोताओं के पास, DTS और नागालैंड के श्रोताओं के पास रेडियो पे पहुंच रही है, उन श्रोताओं तक सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच पुराण वर्मा जी, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: थैंक यू सर, धन्यवाद।
1: यू आर वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स, करण अर्जुन फिल्म रामी खान खुनिया बो एला अरुण आरो अलका यक्निक लगा वस्ते, म्यूजिक दिस राजेश रोशन, लिरिक्स इंदिवर, और तो ही पुरान वर्मा राजस्थान रिक्वेस्ट को लगा गीता किया से, ताई नाम लो सब के दुखी टिकट को दिए से।

0: FM 103 MHz।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज।

And my dear friends, with that beautiful number, we come to the end of today's 1989 sal laga ekta Bollywood songs collection laga amar dipon kore diyeche. I hope aaj laga journey through the unforgettable melodies of 1989 brought back some cherished memories and reminded you of an era when Bollywood music touched hearts with its simplicity, romance and timeless appeal. अपने कंजों के पिछले कुछ बात चुनाई दिए से फॉर स्पेंडिंग दिस आफ्टरनून विद अस योर लव एंड सपोर्ट मेक एवरी प्रोग्राम स्पेशल एंड इंस्पायर अस टू कीप ब्रिंगिंग यू द वेरी बेस्ट इन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट एवरी टाइम सो माय डियर फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड आकाशवाणी को हिमाचल एफएम ट्रगोविन दे होता है ट्यूनिंग विद अगी फॉर मोर एक्साइटिंग प्रोग्राम्स कमिंग अप थ्रू द डे अंटिल वी मीट अगेन अपने कंजों के একদম কন্টিনিউ টু ব্রাইটেন ইয়োর ডে উইথ মিউজিক কুইকনা ইয়াতে জানাই দিয়েছে এতিয়াবলৈকে আপনি এফ এম রেইনবো ডেইলি পাৰ্ভিলে কৰি দিয়া শুনি হব তো আপনি সবাই ভাল দিন থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ওয়ান্স এগেইন হ্যাভ আ গ্রেট আৱার্স এহেড

0: मेघालय के निवासियों।
1: गृह सूचीकरण एवं आवास गणना के दौरान उत्तरदाताओं से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे।
2: इन प्रश्नों को मेघालय राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया है।
1: इसमें परिवार का आकार,
2: परिवार के मुखिया का नाम,
1: घरेलू सुविधाएं एवं बुनियादी सेवाएं
2: जैसे जलापूर्ति,
1: ईंधन का स्रोत,
2: प्रकाश व्यवस्था,
1: स्वच्छता सुविधाएं,
2: रेडियो, टेलीविजन,
1: मोटर कार,
2: दोपहिया वाहन जैसे मूलभूत परिसंपत्तियों,
1: उपभोग किए जाने वाले अनाज
2: तथा जनगणना संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु मोबाइल फोन नंबर आदि शामिल हैं।
1: कृपया 16 मई से 14 जून 2026 तक चल रहे मकान सूचीकरण कार्य के दौरान जनगणना प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग देकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
0: जनगणना 2027 आपकी सहभागिता, राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी।
1: धन्यवाद।
3: Want to reach your clients?
4: Want to wish your loved ones?
3: Ride the airwaves of Akashvani Northeastern service.
4: With attractive ads and promos.
3: A new business venture?
4: Or updating an existing one?
3: Wishes on special occasions?
4: Northeastern service is here for you.
3: We offer airtime advertisements at reasonable rates.
4: In English and in Hindi.
3: We are available on the app News On Air.
4: On FM 100.1 MHz.
3: On AIR any channel of DTH.
4: For bookings and rates, call us on
3: 940-234-8899.
4: Or email us on
3: csunesair@gmail.com.

ये आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है, FM 100.1 MHz आकाशवाणी के लाइव स्ट्रीमिंग ऐप न्यूज ऑन AIR तथा AIR NEDTH पर, जिसका प्रसारण शिलोंग से किया जाता है। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। आइए सीधे चलते हैं मुसू मुसू हासी की तरफ। जी हाँ, शान की आवाज का ये मधुर गीत सुनना चाहते हैं हैदराबाद।

0: सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर घंटे, है ना। अब बहरहाल अभी प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों जिनके हम गीत प्ले नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आनंद ले लीजिए इन इतने प्यारे प्यारे गीत की फरमाइश हमारे पास जो हमारे लिसनर्स भेज रहे हैं, उनकी फरमाइश पर ही आप आनंद लीजिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आपके नाम लेने की कोशिश करूंगा। चलिए अब इस गीत के साथ लेता हूं जो ये गीत प्ले करने जा रहा हूं। ये चाहत फिल्म का है और इसे भेजा है नई दिल्ली से भगवती ने।

दोस्तों रांची झारखंड से पारुल बंसल ने गीत की फरमाइश की है और कह रही हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत यादों की बारात से।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों मैंने प्यार किया मूवी से ये गीत दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सवाई माधोपुर राजस्थान से भूमराज मीणा ने।

दोस्तों, मैंने प्यार किया का ये गीत सुनकर हमारे दो कबूतर जी हैं स्टूडियो के बाहर आ गए, खिड़की पे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं बड़े गौर से, गुटरू गुटरू गुटरू गु कर रहे हैं और सोच रहे होंगे कि भैया गीत तो बजाना था तुमको, वो वाला कौन सा, वो है ना वो कबूतर जा जा जा। बहरहाल कभी कभी ऐसा हो जाता है। विश्व ओम त्यागी मुरादनगर से गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। आनंद लीजिए, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल ने हमें मैसेज किया है। राजेश भल्ला कंकड़खेड़ा मेरठ से मैसेज कर रहे हैं। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोनू कश्यप और उनकी पूरी टीम ने हमें मैसेज किया।

दोस्तों दुनिया में दोबारा आने का मौका मिले ना मिले ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगला मतलब अगले प्रोग्राम के लिए आरजे जरूर मौजूद हो जाते हैं स्टूडियो में। आप कौन है बस उसके लिए आपको रखना होगा थोड़ा सा इंतजार, लेकिन हाँ जो भी आएगा ना तो जरूर कहर भर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना दूल्हे राजा के गोविंदा जी कहते हैं अखियों से गोली मारे। अब अखियों से गोली मारने के लिए कौन आ रही है बस इंतजार करिए 2 बजे का आकाशवाणी FM रेनबो पर। हमारे पास मैसेज आया कंचन का सोनिया विहार से, सुमेर सिंह चौहान का खंडवा मध्य प्रदेश से, और मैसेज भी हमारे पास और आए हैं, जल्दी से नाम बता देता हूं। पंकज ने हमें मैसेज किया है झारखंड मनोहरपुर से, एक मैसेज हमारे पास आया संतोष गुप्ता का कुरुसेला बिहार से, मनोज कुमार ने भी हमें मैसेज किया है। तो इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, बने रहिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार।

0: आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। सैटरडे की ये दोपहर जो जरा धीमी सी होती है, जरा सुस्त सी होती है, क्योंकि अमूमन मंडे से फ्राइडे ही ज़्यादातर लोगों का ऑफिस होता है, वर्किंग होता है, तो ऐसे में सैटरडे संडे ज़रा वो धीमी रफ्तार वाले दिन होते हैं जिनमें थोड़ा आराम करना होता है, थोड़ा खुद को अगले हफ्ते के लिए तैयार करना होता है और थोड़ा कुछ वो बचे हुए काम करने होते हैं जिनके बारे में पूरे हफ्ते सोचा जाता है वीकेंड पे करेंगे। तो आपका कैसा जा रहा है ये शनिवार? ये तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही जा रहा होगा, और यहाँ अभी दीपिका के साथ कुछ हल्की फुल्की सी बातें करके और अच्छा हो जाएगा। किस बारे में बातें यहाँ पर आज करने का सोचा है बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए मेरे साथ इस सफर पर जिसमें पूरे एक घंटे तक रहने वाली हूं मैं आपके साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका है आपके साथ। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना, और आशियाना में आज एक बहुत ही दिलचस्प बात के बारे में बात करने का वैसे मैंने सोचा है। वैसे तो मैं अक्सर कहती हूँ, आप जानते ही हैं, कि मुझे ऐसा लगता है जब बातें अपनों से की जाती हैं तो फिर इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि बातें कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, किस बारे में हो रही हैं, क्योंकि तब बातें दिल से की जाती हैं और दिल खोल कर की जाती है। तो अब बातें किस बारे में कर रही हूँ? बातें असल में एक ऐसे विषय पर है, एक ऐसी बात के बारे में है जो हम सब से जुड़ी है, जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, यादें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यादों को याद करने की बात कर रही हूँ या आपका हाथ थामकर यादों के गलियारे में आपको लेकर जा रही हूँ, लेकिन नहीं, आज मैं ज़रा कुछ हट के बात कर रही हूँ यादों की इस बात के बारे में। देखिए, यादें जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी लगती हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को यादें वो किताब लगती हैं जिनके पन्ने बार बार पलटना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी उनके पन्ने पलटे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस यादों के गलियारे में या इस यादों की किताब के साथ थोड़ा वक्त और बिता दिया जाए। पर कुछ लोगों के लिए ये यादें ज़रा बोझ हो जाती हैं। अब ये यादें बोझ हैं, ये यादें जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी हैं, क्या है आखिर ये यादें और क्यों इतनी ज़रूरी हैं हमारे लिए? क्यों काहे बगाहे आकर हमें गले लगा लेती हैं, और क्यों कई बार खाली रास्तों पर हमारा हाथ थाम लेती हैं? करेंगे बात। फिलहाल के लिए इस गाने को एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। और आशियाना में हम बातें कर रहे हैं कि यादें जिंदगी की जो सबसे खूबसूरत पूंजी होती हैं, वो कैसे कभी कभी बोझ बन जाती हैं। देखिए, यादों को संभाल कर रखना ना हम सभी का नेचर होता है। मुझे लगता है हम सभी की आदतों में शुमार हो गया है। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि यादों को तो हम संभाल कर रखेंगे, क्योंकि यादें ही वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे

बीते हुए कल में ले जा सकती है, वरना वक्त बीतने के बाद उस वक्त में पहुंचना, उस वक्त में जाना, उस वक्त से मुलाकात करना या उस वक्त में हम कैसे थे ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तस्वीरें होती हैं लेकिन यादें, वो फीलिंग होती हैं, वो इमोशंस होते हैं जो हमें उस अतीत में ले जाते हैं। अब पुरानी स्कूल की कॉपी हो, किसी दोस्त का लिखा हुआ खत हो, कोई पहली साड़ी हो, पहली सैलरी से खरीदी गई कोई चीज़ हो, इनकी कीमत बाज़ार में शायद कुछ भी ना हो लेकिन दिल में इनकी कीमत बहुत अनमोल होती है। और ये अनमोल कीमत हम यादों के ज़रिए महसूस करते हैं। यादें हमें बताती हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किन रास्तों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और कई बार जब खुद पर भरोसा खोने लगते हैं ना, तब ये यादें ही हमें याद दिलाती हैं कि रुको, इतना सफ़र तय कर लिया है, इतना आगे बढ़ गए हो तो अब क्यों घबरा रहे हो। जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो इससे आगे भी बिल्कुल पहुँच जाओगे, यकीन रखो। ये जो यकीन है ना, ये कई बार हमें यादें दिलाती हैं और तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमने तो बहुत पीछे से शुरुआत की थी और आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, आज बहुत कुछ है जो हमने हासिल कर लिया है। तो ऐसे में जो अभी तक हासिल नहीं भी हुआ है वो एक दिन ज़रूर हासिल होगा।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं और यहाँ बातों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बातों बातों में एक बहुत खास बात आपसे करना जरूरी है, वो खास बात जो एक खास दिन के बारे में है। ये खास दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है हर साल। योग की जब भी बात आती है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि योग किस तरह से हमें बेहतर बनाता है, योग किस तरह से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। अलग अलग जो आसन होते हैं, अलग अलग जो मुद्राएं होती हैं, वो हमें दिमागी शांति देती हैं, मन को सुकून देती हैं, हमें कई बीमारियों से बचाती हैं, कई तरह की दिक्कतों में भी योग आसन जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। हालांकि अलग अलग योग आसन को आपको किस तरह से करना है, किस उम्र में कौन से योग आसन करना सही रहेगा, किस हेल्थ कंडीशन के साथ किन योग आसनों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। योगासन का जब जिक्र चल रहा है तो वृक्षासन यानी ट्री पोज एक ऐसा योगासन है जो बहुत पॉपुलर है और इसे करना भी बहुत आसान होता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। ख़ासकर आप अगर बिगिनर हैं, आप बहुत ज़्यादा योग आपने नहीं किया हुआ है, तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इससे ना केवल स्ट्रेस कम होता है, जो कि आज के वक्त में मुझे लगता है ना चाहते हुए भी हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, स्ट्रेस कम करने में, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में, हमारे कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में, हमारे पोस्चर बॉडी पोस्चर को सुधारने में और पैरों को मजबूत बनाने में ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो आपको इसे अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। इसे कैसे करना है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको एक बार एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस इंटरनेशनल योग डे से योगासन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का प्रण लें। अगर आप पहले से ही योगा प्राणायाम ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास जो और लोग हैं आपके उन्हें भी प्रेरित करें ऐसा करने के लिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो इसे करने की शुरुआत करें।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
8: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
9: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधार।

0: त्वरित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: जिक्र हो रहा है यादों का। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना, और जिक्र हो रहा है यादों का, जो कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होती हैं, किसी के लिए जिंदगी का वो हिस्सा होती हैं जिन्हें वो बार बार पलट कर देखना चाहते हैं। किसी को लगता है कि यादें उतनी भी कीमती नहीं होती, तो किसी के लिए बोझ बन जाती हैं। अब देखिए, ये यादें तब असल में बोझ बन जाती हैं जब कुछ ऐसी यादें जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो बार बार दस्तक दे देती हैं। किसी अपने के बिछड़ जाने का दुख, कोई अधूरा रिश्ता, कोई ऐसा फैसला जिस पर आज भी अफसोस होता हो या जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई हों, ऐसी यादें कई बार दिल पर बोझ बन जाती हैं। मगर शायद हर बार गलती यादों की नहीं होती, क्योंकि यादें तो हमें बस हमारी कहानी के पुराने किस्से सुना रही हैं। अब दर्द हमें तब हो रहा है या बोझ हमें वो तब लग रहा है जब हम उस किस्से में अटके हुए हैं। जिंदगी का मतलब यादों को मिटाना या यादों में अटक जाना बिल्कुल नहीं है। जिंदगी का मतलब यादों को संजोते हुए, यादों से सीखते हुए, यादों को सहेजते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसे में उन यादों को याद कीजिए जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अब आप कहेंगे इस पर हमारा बस थोड़े ही चलता है। बिल्कुल नहीं चलता, मानती हूँ मैं, लेकिन खुद को उन अटकी हुई यादों से बाहर लाने के लिए थोड़े से कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये यादें खूबसूरत लगें, बोझ नहीं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में बातें हो रही हैं कि यादें जो किसी को जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी लगती हैं और किसी को ऐसा लगता है कि बोझ हो गई हैं। कभी कभी किसी एक इंसान को भी अलग अलग वक्त पर दोनों चीज़ें महसूस हो सकती हैं, यानी कभी यादें खूबसूरत सी पूंजी लग सकती हैं और कभी बोझ लग सकती हैं। असल में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो होठों पर मुस्कान छोड़ जाती हैं और कुछ ऐसी जो आंखों में नमी छोड़ जाती हैं। एक पुराना गाना, एक भूली हुई खुशबू, एक तस्वीर और फिर अचानक एक लिया हुआ नाम, और देखते ही देखते लगता है कोई सालों पुराना मौसम फिर से लौट आया है। ये यादें अजीब होती हैं, असल में ये कैलेंडर नहीं देखती, बस दिल का दरवाज़ा खटखटा देती हैं। अब बातें जब यादों के बोझ बनने की हो रही हैं तो मुझे लगता है हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई पल ऐसे हैं, कोई ना कोई यादें ऐसी हैं जिन्हें हम बार बार याद नहीं करना चाहते या फिर जो मुस्कुराहट नहीं तकलीफ देती हैं। उन यादों के लिए आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से डिलीट नहीं कर सकते। देखिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिल है, वो कोई मशीन नहीं है जिससे आप कुछ डिलीट कर पाएंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो यादें आपके साथ ही रहेंगी, भले ही वो आपको तकलीफ क्यों ना दे रही हो, पर उन यादों से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे पल हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, कोई ऐसा मुकाम है जो हासिल नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके लिए बहुत मेहनत की थी या जिसमें बहुत प्यार दिया था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका, कुछ भी ऐसा है जो आपको याद आता है तो बुरा लगता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ और चीज़ों में खुद को इंगेज करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, जो आपको अच्छी लगती हों। खुद को डिस्ट्रैक्ट करना क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उन यादों में उलझे रहेंगे तो आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी को नहीं देख पाएंगे और आने

वाली जिंदगी में खूबसूरत यादें भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर कुछ यादें तकलीफ दे रही हैं, अगर जिंदगी का एक हिस्सा मुश्किल से भरा रहा है, तो ये तो तय है कि आने वाली जिंदगी खुशियों का प्यारा सा गुलदस्ता, खुशियों का प्यारा सा तोहफा आपके लिए जरूर लेकर आएगी।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: मंगल भवन मंगल हारी,
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। प्रोग्राम है आशियाना, बातें हो रही हैं, यादें जो हर याद हमारे दिल के करीब होती है, हालांकि कुछ यादें हमें परेशान भी करती हैं। ये यादें जो कई बार दर्द देती है तो कई बार चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। असल में यादें किताब के उन पन्नों की तरह हैं जिन्हें फाड़ा तो जा सकता है लेकिन उनमें लिखी कहानी, उनमें लिखे किस्से मिटाए नहीं जा सकते। इसीलिए यादों से आप पूरी तरह भाग भी नहीं सकते, यादों की कैद से खुद को पूरी तरह आज़ाद भी नहीं कर सकते, पर आपको ऐसा अपने साथ नहीं होने देना है कि यादों में खुद को इस तरह कैद कर लेना है कि आप परेशान हो जाएं, आप उदास हो जाएं, या फिर आप जो है अपनी ज़िंदगी का आने वाला वक्त एंजॉय ना कर पाएं, अपनी ज़िंदगी जी ना पाए अच्छे से। क्योंकि यादों को हम जब तक ज़िंदगी का एक हिस्सा बना कर रखते हैं तब तक वो बहुत खास होती हैं, लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसे फेस आते हैं कि हम गुज़रे वक्त की यादों में, हम उन यादों में जिन्होंने हमें परेशान किया होता है, इस हद तक खुद को बांध लेते हैं या वो यादें इस हद तक हमें बांध लेती हैं कि हमें लगता है अब क्या करें या अब तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। बस उस फीलिंग से आपको खुद को आज़ाद करना है और देखिए फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो सोचा नहीं हो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो वो हमें खुशी नहीं देगा या फिर वो हमें परेशान ही करेगा। हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब इतनी सारी खुशियाँ मिल जाएं जो हमने सोची भी नहीं हो, और उसके बाद वो पुरानी यादें जो हमें बोझ लग रही थी वो हम भूलने लगे, या फिर उन्हें हम बहुत कम याद करें, बल्कि उन नई खूबसूरत यादों को बनाएं जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुशियाँ देंगी, या फिर जो हमें जब भी याद आएंगी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगी। बस यही हमें करना है, यही छोटी सी चीज करनी है, क्योंकि यादों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, डिलीट कर देना, बिल्कुल हटा देना जिंदगी से पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि जो यादें तकलीफ दे रही हैं उन्हें जरा कम याद किया जाए, लेकिन ये भी मैं मानती हूँ जब आप परेशान होते हैं तो अक्सर वही यादें आपको याद आती हैं। इसीलिए ज़रूरी है खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जितना खुश आप किसी और को रखना चाहते हैं, अपने अपनों को रखना चाहते हैं, उतना ही खुश खुद को भी रखने की कोशिश कीजिए। और फिलहाल यहाँ दीपिका को इजाज़त दीजिए। जी हाँ, इस प्रोग्राम में यानी कि आशियाना में अभी लेनी होगी आपसे इजाज़त मुझे, लेकिन 4 बजे से दोबारा आपके साथ मैं जुड़ूंगी। यहाँ अभी 3 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज गर्मियों में होने वाले जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं और जो यूनानी मेडिसिंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात होगी। एक्सपर्ट साथ में होंगे और बस आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। 4 बजे से दोबारा आपके साथ मैं जुड़ूंगी, 4 बजे से दोबारा आपसे बातें करूंगी, प्रोग्राम अल्फा जैन लेकर हाजिर होंगी। तो बस आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको बस यहाँ पर मेरे

0: FM 드래곤 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 드래곤 밴. FM 103 메가헤르츠.
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि

0: वीरवायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। ये 38 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
6: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
5: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's Slovakia visit.
7: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Paluruthi for Akashvani News from Bratislava.
5: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Evian on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on the 18th of this month to attend Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. We have a report.
8: Four new institutional initiatives were announced at the conference. Under the first initiative, a network of centers of excellence will be set up for joint research on natural and regenerative farming with the Indian Institute of Farming Systems Research playing a key role. The second initiative involves setting up a BRICS digital agriculture network to bring artificial intelligence and digital technology into farming, which will be coordinated by IIT Delhi. The third initiative will establish a global forum to protect farmers' rights related to seeds and to preserve traditional seed varieties. The fourth initiative will set up the BRICS Agri-N network for sharing agricultural inputs and genetic resources among member countries. With Abhinav Goyal's report, Prashant Kumar Sinha for Akashwani News.
5: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post, IAF said Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu Khemaram Kumawat and Agniveer Vayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of 5 air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. He also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families and said the nation stands firmly with them in this hour of grief. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. The Defence Ministry said in a statement that Lieutenant General Dheeraj Seth was commissioned into the Armoured Corps in December 1986 and has an extensive experience across the operational strategic capability development and institutional domains, contributing significantly to the Indian Army's combat effectiveness and long-term transformation over a distinguished military career spanning nearly 4 decades. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Narendra Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के टुडे वी फोकस ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन एंड सेलिब्रेट द नेशंस कल्चरल लेगेसी.
3: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple, and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Under the museum grant scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
9: 2016-17 museum grant established, we upgraded a new annexe. There we have set up Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the museum grant scheme, the one thing most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
3: The cultural function and production grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instrument for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bum Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
10: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
3: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
5: Union Home Minister Amit Shah today said that Prime Minister Narendra Modi has nurtured a new culture of education, skills, innovation and startups across the country over the past 12 years. In a social media post, Mr. Shah said, India has the world's second largest higher education network due to various policy initiatives undertaken by the Prime Minister. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. Mr. Puri described the 12-year tenure of Prime Minister Narendra Modi as people-centric and development-oriented. Manipur police notified that certain individuals and groups are creating, sharing and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advised the public not to believe, share or forward rumours or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket,

उन्हें ठगा सब बिल्ला के दोबारा स्वागत करें से आकाशवाणी एफएम ट्रैक अपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर और राज्य रातिया में खला प्रोग्राम सबसे पहले ते सुनिधि चौहान लगा वास्ते परिणीता फिल्म होने ले ए बार दिया से डिस्को डांसर फिल्म की गीत गाए से पार्वती खान

लव स्टोरी 1998 फिल्मत बापी लहरी लगा आवाज तो शुनिले शुनी थका सब प्रोग्राम एक बार दूसरा गीत शुनब आशा भोसले लगा आवाज तो फिल्म नमक खला।